0: रुत आई, रुत आई।
1: नहीं और रब नाल गलां करानियां बहुत फर्क है। तीसरी वड्याई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विशेषता जड़ी आप जी ने पिछले वीरवार गुरु ने सेवा लई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब किधरे भी हौ नहीं, हौ नहीं। नानक सब, नानक दवाना,

प्रभु की जरा गल सुना दे, संसार के विकारा के बंधना तो जरा बचावे। है कोई ऐसा सज्जन मित्र, है कोई ऐसो हमरा मीत, सकल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपनो जीत, ओदे नाल पक्की सांझ पां। श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने आ, साहबा ने कहा जे तू तारू पान ताहू पुछ दड़न कर, तैनू जीन दी बड़ी जाच है, तू बड़ा तारू है, तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा, फिर भी तू उन्हां नू पुछ लै ताहू खरे सुजान बन्या ए नी कपड़ी। जेड़े इन्हां पानिया चो लंघे हुए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथों लंघण दा मसला पैदा हो जावे ना, तू भावें किड्डा वड्डा तारू है फिर भी तू उन्हां नू पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे, इस राह विचों लंघण वास्ते चंगा रवे जे तू किसे तारू नू जिहड़ा इथों लंघिया होवे उहनू पुछ लवे इथों तू किवें लंघिया सी, की हालत है। इसे तरह धर्म दे मार्ग ते बंदा किन्ना होशियार ते चलाक, धर्म दे मार्ग ते उहनां लोकां दे नाले गल कर लैणी, लालन रावया कवन गति री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी कोई मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लैना चाहीदा है ये खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे, उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है, मत उहदा नूं कोई मत ऐसी मन च आ जावे, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर लईए, उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, वो जेड़े संत भगत परवान जो प्रभु आया, सही विचक्षण जंत जिनी हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभु सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो आप चल सकदा धर्म दे मार्ग ते किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है, इहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोभा लाहेवंदी रहिंदी। जिस दिन कोई मिल पैंदा धन गुरु नानक दा सवारे आया भाई मन सुख, जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिलिया सी ओ वरतां पूजा करमां बेअंत तरह दीआं रस्मां च फसिया आया बंदा, जिसने भाई मन सुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਮਸਤੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਉਹ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ। ਐਸੀ ਚਿਣਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਗਲਾ ਦੀਪ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ

कोई इदे विच फर्क नहीं, कोई इदे विच संदेह वाली गल नहीं। खालसा अकाल पुरख

अगर कोई चोरी दे धन दी अरदास करदा है, पता भी है कि जिदी मैं अरदास कर रहे हैं एदी कमाई नेक नहीं, अगर वो अरदास करदा है तो साहब जी कहंदे ने वो फिर दलाल है, तो उहदे भी हाथ वड्डे जाणगे क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया। रब की दरगाह विच सच

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओही। देहोरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे नहीं उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले सुनो,

जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हन, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपा मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अल्लाह अपेक्ष होई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़द मुसलमान कुरान पढ़द मुसलमान अल्लाह नु याद करद हिंदू राम नु याद करद ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचिए दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है मकसद ते दोनों दा परमेश्वर दी प्राप्ति है पर परमेश्वर नु लड़के नहीं प्राप्त की।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

राम रहीम कहाईंदे। एक नाम हिंदू राम कहंदा है, मुसलमान रहीम कहंदा है। राम रहीम कहाईंदे एक नाम, परमेश्वर एक है उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान रहीम कह रहे हैं, पर वो एक है। दोए राह पुलाने, पर देखो ये दोनों किवें सच दा राह भुल गए ने और परमेश्वर दे नाम ते एक दूसरे नाल झगड़ा पै करते हैं।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे, भाई गुरुदास जी बयान करते हैं।

वक्त जेड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे हन। मारन गौ गरीब नू धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए, इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पए, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नू लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे हैं।

चांदना चांदन आंगन प्रभु जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभु जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकां नूं पढ़िए, कोई रसना खाली नहीं।